0: ওয়েস্টার, আলসার, হর্নিয়া, পায়েস, ফিস্টুলা, পিনাস, কোলেস্ট্রোল, টনসিল, মৃগৌলা, পিত্তকো পথরি, পিসাব পরীক্ষণ, ছালা সম্বন্ধী সমস্যা, যোনি চিলাউনে, নিন্দ্রা নলাগ্নে, শরীর ফুলনে, মহিনাবারী গড়বড়ি লগায়ত সবই রোগহরুকো বিনা অপারেশন, বিনা দুখাই, সফল উপচার গরিনুকা সাথে নাড়ী পরীক্ষণ র আমজে চিকিৎসাকো মহত্বপূর্ণ কপিং থেরাপি র অকুপঞ্চার বিধিবাট উপচার গরিন্ছ। सुनाबाद हर्षावर संगे बुद्धिस्टर का पूजा का सामग्री होलसेल मूल्य में बिक्री कर आमजी औषधालय प्रत्येक दिन बिहान 7 बजे देखि बेलुकी 6 बजे समय खुला रहने फोन मार्फत नाम दर्ता सकने साथ ही हम शाखा नामची बजार बाटी सेवा लिख सकता। संपर्क नंबर 0385201129 9843879852 9824417 18 9843449696 र 9816023472 आंजी औषधालय सोलो दुतकुंड नगरपालिका 5 सल्लेरी सोलो खुम्बु 5 नंबर ओडा कार्यालय केही अगाडि।
1: आज त तिमी धेरै मलिन थकी देखिन्छौ नि, के भयो?
2: उसले आज फेरि गाली गर्यो, पैसा पनि दिएन, मोबाइल पनि खोस्यो।
1: ओहो दिदी, कुट्नु मात्र हिंसा होइन, गाली गर्नु, डर देखाउनु, पैसा नियन्त्रण गर्नु, यी सबै घरेलु हिंसा हुन्।
2: हो र, मैले त सोचेकै थिइनँ, यी त घरभित्रका सामान्य कुरा होलान् भनेर।
1: होइन नि, घरेलु हिंसा भनेको घरभित्र वा नजिकको सम्बन्धमा हुने कुनै पनि प्रकारको दुर्व्यवहार हो। यसमा शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा, यौन हिंसा सबै पर्छन्। मोबाइल नियन्त्रण गर्नु, आवत जावत रोक्नु पनि निजी कुरा होइनन् नि, घरेलु हिंसा हुन्, अपराध हुन्।
2: त्यसो भए अब म चुप बस्दिन, सहायता खोज्छु।
3: घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन 2066 हिंसा गर्नेलाई जरिवाना र कोही दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। हिंसा गर्नेले 3,000 देखि 25,000 सम्म जरिवाना वा 6 महिना सम्म कैद भोग्नु पर्छ। दुर्व्यवहार दोहोरिएमा सजाय दोब्बर हुन्छ।
4: हिंसा सहनु पनि अपराध हो। हिंसा भएको छ भने नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिनुहोस्। उजुरी गर्दा दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ।
5: नेपाल सरकार, विज्ञापन बोर्ड।
6: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन चौकमा।
7: होंडा का विशेषता
8: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
7: उत्कृष्ट माइलेज
8: राम्रो रिसेल मूल्य
7: टिकाऊ र भरपर्दो
8: अफ रोड का लागि पनि उपयुक्त
7: BS6 तथा नया नया भर्सन बजार में लॉन्च भइरहेको
8: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी।
7: हाम्रा सेवाहरू
8: ओखलढुंगा र खोटाङको दिक्तेल बजारबाटै फाइनान्स को सुविधा सहित होंडा का सबै मोडल का मोटरसाइकल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
7: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनु का साथ ही सर्विसिंग सेवा
8: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
7: अनलाइनबाट बुकिंग गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ।
8: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गुरुमारे भुजाई ओखलढुंगा।
7: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852988022 र 9842803000।

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Sound check. Studio time. It's studio time.
4: It's 7 a.m. Bihan ko 7 baje.
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा भोलामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दुदकुंड नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन चौकिया
1: होंडा का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भरपर्दो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया भर्सन बजार में लॉन्च भइरहेको
2: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुंगा र खोटाङको दिक्तेल बजारबाटै फाइनान्स को सुविधा सहित होंडा का सबै मॉडल का मोटरसाइकल तथा स्कूटरहरू कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनुका साथै सर्विसिंग सेवा
2: एक्सपेन्स गो सुविधा सहित मोटरसाइकल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
1: अनलाइनबाट बुकिङ गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
2: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गुरुमारी भन्जाई ओखलढुंगा
1: संपर्क नंबर 0375902222 9852288022 र 9842880300

0: हाउस वायरिंग का सामान चार्ज वाला टॉर्च लाइट तथा इलेक्ट्रोनिक सामान होलसेल मूल्य में पाइन चट्यांग पड़े जले संपूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामान मरम्मत
1: साथ ही डीप फ्रिज फ्रिज एसी पाने का साथ ही मरम्मत
0: प्रोपाइटर अजय पंचियार संपर्क नंबर 9890059094 र 9863868614
2: वर्षा इलेक्ट्रोनिक्स एंड सर्विस सेंटर सोलु दुधकुंडा नगर पालिका 5 फल्लेरी सोलुकुम्बु
1: राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक देखि 30 मीटर भित्र।

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: सन्चे सोलु एफएम स्टुडियो टाइम
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुतकुंडा नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू

आदरणीय श्रोता रो मागदे प्रभु येशूला पवित्र मिन्दे जयमसी अनि थ्याफुला याङजे यारबला केतंगरी परमेश्वरला वचन क्यामजे प्रभु येशू शिवा क्यामजे बौरी रेनबा बिबा बारेरी सन्सियो बलमुला थेक्यामजे याङजे लानन आशिष यालमुला तिङी याङ छार जीवन तोन्बा बिबा विषयरी सन्सेलमुला प्रिय रोमा गदे रंगीला चिठी पत्र एसएमएस कदे प्रतिक्रिया कदे नंजे प्राप्त लड़ीबन मुला अनि रंगीला प्रार्थना लिशेरी प्रार्थना लड़ीबन मुला प्रिय रोमा गदे रंगीजे चो मार्गदर्शन केतंग रंगीला रंगलान केतंग हिन बमला बिसी नंदा पत्र कोई हाबदा हमलेशी को बिसी अनुरोध लबमुला प्रिय श्रोता पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल युहन्ना 3 अध्यायला 6 पद हिंजे 8 पद सम्म मनन लसेलमुला नाय प्रति मुला रांगनी जे सन्सिगो येशु जे सुंगजे हिनमानो नाय येत पांगमा मुला कोई छार तसी जन्मे आदिनी विषम थेजे परमेश्वरला राज्य त मांगमा अहम शरीर क्यामजे नबला शरीर हिन्ना अनि पवित्र आत्मा क्यामजे नबला आत्मा हिन्ना नै यत छार तसी नदब मुला पंक्षी पाङमा अचम्मा थङ्गम्ग लाबहास हाबा लाबहास यारबा होसन यारबा मुला ए लाबल आवाज सानबा हाम्बा मुला तर थे हानङ क्यामजे हाबा अनि हासो यारबा थे आसेब मुला आत्मा क्यामजे नबला हरेक मि हेरङ मन तब मला बेसी येशु प्रभुजे रङला वचन लि सुन्जे जो घटना त याङजे विचार लसी सिज विषम प्रिय रोमा गदे यहुदी समाज रि निको देमास मिन लबला कोर्की प्रसिद्ध मि मुबला यहुदी समाजला सदस्य नु हिम मुबला थेजे येशु जे लस्यु बला आश्चर्य लके अनि येशु जे दनमला उपदेश अनि यहुदी व्यवस्था त प्रतिसी सीमाले येशु ख्रिस्ट परमेश्वरला चाहिन्बा विवाद था याङजी अनि थे समाज क्यामजे लोङसी न त समाज खलाला कि समाज आज ब पाङला कि पाङसी थे लोङबा मोबला थे दैरी थे मुनङ लालटिन नसी येशु जा चु प्रश्न लबरी हाजी अनि येशु जे चु जवाब निको देमस्त दोन शिव मुला अनि थे जे थे बाद आगो बमुला ए यहुदी कदेला एतेङा छ सदस्य तसिनो ज्ञान देन बुद्धि जे धर्मशास्त्र जे लिङ्गमला व्यक्ति तसिनो चु बाद अगोनी विषम स्यान्दो जे हरणले कोसे बिव प्रश्न येशु जे लास्यो जे थे जे उत्तरी पाङ मुला आमाला गर्व क्यामजे नसिनो फेरि थे खेपतोसी हरङले आमला को क्यामजे नबहामसे येशु जे चुरी थेला आत्माला बाद सुङमला मुला तर थे जे शरीर लताम पाङजे तिनी संसारी लानन जवान व्यक्ति का देमुला तर थिङी का देला शिक्षा जे लसी शरीर लतामजे नाङमामुला अनि वास्तवरी येशु जे थेला आत्माला चिन्ता लसी बमुला वास्तवरी एदेन छार दसी हृदय परिवर्तन तब अहम्ने विषम न्याङ रङजे रङदन सुधार लबा अहम बमुला न्याङल छिमेक न्याङल समाज न्याङल टिम न्याङल जिल्ला न्याङल देश हरणले परिवर्तन त प्रिय रोमा गदे तिमी एदेन हृदयलाई परिवर्तन तब त खाँचो मला येशु ख्रिस्टी छार तसी जन्मेकी बता लानन खाँचो मला एदेन नै वास्तवरी येशु त जब सेम नाङजे म सेब मुला विश्वास लब मुला अनि ग्रहण लब मुला विषम थे याङला हृदय चुनहाब मुला अनि थेला उपस्थित जे याङला हृदय परिवर्तन
তাবমুলা ঞান খারাপ তাবলা ব্যক্তি চাবা তাবা হামামুলা পাপ রাখছি যে নাং বলামি ঠেলা ছুটকারা তাবা হামামুলা আচাবা সাপ্ত যে পাংবামি শুদ্ধ তাবা আনি পরিবর্তন তাবা হামামুলা নম্রত বোলি দয়ালু আনি ঠেলা জীবনী তাবা হামামুলা আনি আর্ক বাদ রাঙনি দা তিনি রাঙনিলা আগাড়ি নাইচো বাদ আংজে ঞাংজি বিচারলাই তাসি বিষম প্রভু যেসুজি ঞাংদা মায়ালা শিবমুলা আনি আর্ক বাদ রাঙনি দা চোরে মোবমুলা যেসুজে হতে সুমিন মহেনজে নিকু দেমাস মিন লবামি ঠ্যাম ক্যামজে ইয়ারজি খাস গরে ঠে যেসু দ গ্রহণ লাবারি পাংসি হাবল মোবলা ঠেলা শ্যামলা তাম হৃদয় তাম এসুজে কোসিউজে আনি আর্কো ফ্লারি থে যে এরংলি সুংমামলা তু ছংমান চান্দো হালজে লাভ হাম্মা আনি যেসু খ্রিস্ট বাহেক চান্দো হালজেনু লাভা আহাম্বামলা পরমেশ্বর লমায়া ঞ্যাংল বিজ্রি এরংলি প্রকর্তা যে কি থে যে রংলা কোরকি যে মোবলা চানো চু সংসারি পুই হাজি তা কি চাকাম যে ঞ্যাং শোভা হামগাই পরমেশ্বর লমায়া চুরি মুলাকি ঞ্যাং যে মায়া লাবলা আহিন কি থে যে ঞ্যাং দা মায়া লাসিউবলা হিননা আনি ঞ্যাংল পাপল উদার ছুটকারা লাবদা রামলা চা পুই হাসিউজি ইউহন্ন চার অধ্যায়লা নৌ হিঞ্জে দশ পদরে এরৌলে প্রিবলমলা তরে অনন্ত জীবন চু হিন্না কি ঠেঙি কদে যে এ কোরকি যে সত্য পরমেশ্বর হিন্না আনি রং যে পুই হাবলা ইসুদা মসে গাই প্রিয় রোমা গদে প্রভু ইসুলা মায়া কতি আচমলমুলা থে যে ইয়াংদা রংলা জীবন অর্পণ লাসিউজি এদি ইয়াং যে ইয়াংল জীবন পরিবর্তন লাসি থেদ বিশ্বাস লজি বিষম থেদা আশিস দনশেলামুলা তিঙিল কে দাঙে সময় জেগা দা বিস্তার নু বেদলা যে প্রিয় রো মাগা দে তিঙিল বচন রে পরমেশ্বর যে রাঙে দা প্রশস্ত আশিস দনশিউ গায়

0: रोगादे रंगसी दन्दे बर्खर ज्ञानशिवन मला मार्गदर्शन गेदाङ रोगादे तिनी लच्छु गेदाङ रंगनीदा खरङमा नम्जी तुदे छु गेदाङ ज्ञानसी रंगनीदा तिकै खुल्दुरी ताबा मुसम रंगनीला पत्रला नुन्छे आश लसिची बमुला रंगनीला सल्ला कुई खला कुई खसिउला विवाह रंगनीदा आनन्द जेन बमुला तुदे रंगनीला प्रार्थना लदुब विषय दुगो मुला विषम रंगनीसी कुई खसिउको विवाह नन्ना जेन बमुला रंगनीदा नन्ना छु गेदाङला ठेगाना चुरङ बमुला
1: कार्यक्रम मार्गदर्शन जीपीओ नंबर 8975 ईपीसी 2561 काठमांडू नेपाल ईमेल आईडी twrnepal@yahoo.com एसएमएस लागेरे 98473 35679 98473 35679
0: लसो रोदुगु तिनी छु गेदाङ यासेङनी फेसी निबन मला दोषी खाबा चुनुन दुरी रंगनी लंगोनसांगले रूप तबरी थला विवा बाच्छ लवन नई चुग्याम फेसिनेला लस्तो फ्याफुल्ला